गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इसे राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतांत दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा राग दा प्रथम पहर, पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द बोल हन, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे।

गोरे अरे हम धार कृपा करो दीन के दाते कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो

भाई जो गांसी में पहुंचे हजूर ने दूरों तक देखे प्यारी सास संग तुम्हें जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता वो भाई जोगा सिंह आ गया आज आ जोगिया साढ़े कोल आज भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे और ए तो प्यार नाल पै बुलांदे भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंच जोगा सिंह भाई आखा जी आया सोना सिख तू है सरदार बीबा घर नार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा भाई जोगा सिंह सोच मन मैं ता समझिया सी गुरु अंतर जामी जे अंतर जामी होंदा ता हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा ता मेनू सजा दे पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर जे गुरु अंतर जामी नहीं जे गुरु इथो दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह किवें बां फड़ेगा बारह साल एवं गुरु की सेवा की आखो सी अंतर जामी सदियों सोचन लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है हुण अशरदक दे खाते पिया पैंदा गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंद हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने तकिया इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजर नीवियां हो हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं देंदा तकदा फिर खा तीजी मेरी जिसेले साहबा ने किया जोगिया मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने जिसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया भाई जोगा सिंह हैरान हो गया कंबन लग गया की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देन वाला इको ही है दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह अच्छा मैं पापी हां मेनू बख्श पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया जे संगत च बोलना था हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बड़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप ते तू कहने गुरु नू पता है नहीं तो भाई जोगा सिंह कहन लगा महाराज ए भी चंगा होया आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर कलगीधर पातशाह जी कहन लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है मेरी अजमाइश की थी है भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माध गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा सुनाया पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश पूरा पहले जामे सिख ने अजमाया बाबर दी जेल च अरदास की थी मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै तो जो गया मैं संगतां दा हुक्म सिर मथे रखे जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बलदी रेत पाई पर मैं अजमाइश पूरा विधि चंद ने मेनू अजमाया छेवे जाने दुशाले ले

0: बादशाह मेनू बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकल। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कह लग गया कि गुरु नु पता ही कोई नहीं। रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदूर कहन लगे जोगिया भूल गए, हां पातशाह कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो श्री बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे है प्यारी सास संगत। भाई जोगा सिंह ने दो लावा लिया ते दो नहीं।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

कौन करे, पत पवित्र लिए कर अपने सकल कर्त नमस्कारो, सकल कर्त नमस्कार।

से पाऊं जो तेरे रंग रासे स्वामी दिन का जन्म मर दुख नासा तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुरु का दिलासा जिस

ए श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सारंग महला पंजवा ते पड़ताल करके लिखी है। ए बड़ी पुरातन पड़ताल है जो रागी सीना बसीना गांधे चले आ रहे ने। इस दे अंदर चार ताल एक ताला ते रूपक तीन ताल और फिर सुलफाक है। पुराने वक्तां च एक ताला ते चार ताल ते रूपक विच गांधे सी। इस विच एक सुलफाक दी लै यानी मैं और बधा दीती है तो हुण इहदा रूप इस तरह बनेगा।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

जियो तुमरी कृपा ते तुझ पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तो बिंदु जा और न कोई था तेरा खेल अखाड़ा जियो बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब किचों कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई

जन को तब अपने कतान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे जिस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण तन गोपाल साखी।

हम जाएंगे और तुम पे लेना तू मेरा देना जो तुम दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ये लाएंगे।

मज्जन होत साधु तुरे आवण जान रेखित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण गाओ साफ सफाई मन पिंडे।

पलंग राव दे अंदर धन गुरु नानक पातशाह जी ने उन्हां गुरसिखां तो नाम जपण वाले तो हजूर फरमांदे मैं कुर्बान जांदा हां ऐ वाहिगुरु जो तेरे नाम विच जुड़े ए तन माया पाया पैरे ए जड़ा तन है नू माया दी पाह लगी पई है माया दी मैल लगी पई है ए तन माया पाया पैरे लीतड़ा लब रंगाए मेरे कन तो न पावे चोरड़ा प्यारे क्यों धन से जी शरीर रूपी चोलड़ा जिसनु लब दी मैल है माया दी पाह लगी है एडा मैला चोला है ओ स्वामी कंत इसनु किस तरह प्रवान करेगा मेरे कंत न आवे चोलड़ा प्यारे क्यों धन से जे जाए हजूर कहंदे न हाँ कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हाँ कुर्बाने जाऊं हाँ कुर्बाने जाऊं तिना के लैण जो तेरा जिन्हां ने इस महल तो अपने आप नु दूर की अपने मन ते तन दे उते नाम रूपी सुंदर चोला पहने नाम रूपी सुंदर ड्रेस पाई है फिर दुनियावी कपड़े मैले हो जाते हैं इना दे रंग भी फिके पै जाते हैं कुछ समय दे बाद कपड़िया दा सुहपन ए नहीं रहिंदा कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना पर हजूर फरमाते हैं जिस इंसान ने नाम रूपी सच्चा कपड़ा पा लिया है जिस इंसान ने नाम रूपी अपनी ब्यूटी दे स्वप्न बनाया है मैं उस तो कुर्बान जाना ए रंग सब तो श्रेष्ठ है माया दे रंग भी फिके पै जाते हकूमत दे रंग भी मध्यम पै जाते पर जो सच्चा रंग है ए कदी

अनंत सावधान पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चों वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत सावधान पाठ

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलते ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरां ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुर ते इहदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदश है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण

सावा नित खड़ी मुझो बनबाली राम राजे तार गुर हर मार जाली मेरे मंत्र नाम धार है जाली जन्ना सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली सुख मैला श्री चार बसे तेज को

सदंग ज्ञान सदंग वेद सदंग ब्राह्मणे खत्री सदंग सूर सदंग शूद्र सदंग प्राकृते सर्व सदंग एक सदंग जे को जाने देव नानक तंका दास है सोई नंजन दे एक सदंग सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा।

0: ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे कने सब विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा मन सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे लखनऊ सच्चे सतान सच्चे ससुर सच्चे तेरे सिर सच्चे साला सच्चे त्रिपुर सच्चे पातशाह नानक सच सच जो मन जमे सो कच कच महला पहला
1: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े जा सच ने वड्डी उड़े जा ने चल थाओ वड्डी उड़े जा ने अलाओ
2: ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਣੇ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਰੇਵ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾ।

जन्म कटे बेकार, पैर धरती जमे पार, पैर चिंतरे सिर पार, पैर चराया दरद्वार, पैर सुने पैर जन को परोड़ी चतनंद, पैर सिंधु सुनार, पैर जाडाने आकाश, पैर जोत मामल सूर, पैर जावे जावे मोर, सजे पौन के सिले, नानक ने पौ निरंकार, सचे खला पहला, नानक ने पौ निरंकार, वो कितने रावण वाल, कितने कन कहानियां, कितने वेद

0: अपने पौन पानी में संत जन सूरज उतार सभी धरती माल तन पर तन संग जार नाम सह ज्ञान विमुखी भय गया जम काल मुदा पहला वाइन चले न चुनपुर पैर लान फिर सिर उठो रामा छठे पाए वे खेलो कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाव निरंकार सच नाम जाकर किया सर जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ तिन्ही रंजना मचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नगर करी नगरी कर्म लगाए पार बोलो चखा चक्की चक थल मरोले बहुत अनंत लाटू मात आनी आन गा पंखी पौंगिया लड़ना साथ सुए चढ़ को आइए जंत नानक पौंगिया करता है अंत
1: अंदर मन को है सुए पैकेट में जैसे हुए नाच नाच असे चले सिरोट न जाए सदन हो

विकायकार जल थलिया मुड़िया लोहा करा कर जे आखे से तुहे जाने तिन में तेरी साथ नान पत्ता मुख सरान सचना मधार सदानंद रहे दिलाती गुणवंत्या पाचार महला पहला।

तेरी रचना ते गुरबाणी का वस है, जिथे गुरबाणी का वस है उथे निरंकार का वस है। प्रधानी कहो मेरा निरंकार एदा भी भला बाबा एदा भला। हजूर कह लगे हाँ प्रधानी तू कहो मेरा वाहिगुरु एदा भी भला। बुरे नाल सब बुरी करें दे माफ करन के सियाने, बुरे नाल फिर नेकी करनी ए गुरु नानक ने। प्रधानी साडा तीजा वचन है मोड़ न, तू ही कहो मेरा निरंकार एदा भला करे ते मेरे सिख भी वाहिगुरु की अरदास करया करनगे। ते की कहणगे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत ते सरबत दा भला पगड़ वाला दुनिया च कोई आया तो मेरा धन गुरु नानक दा सारिया का। साहबा ने बाणी किया सबे जी संभाल सबे जी संभाल अपनी मेहर कर। गुरु ने सारिया का भला गुरु नानक क्यों वड्डा है, धन गुरु नानक पातशाह क्यों सारिया तो वड्डा है। कहरी साहब सिंह धन गुरु नानक पातशाह जी ने सारिया नाल प्यार किया। आओ तेरी पढ़ी

रो लिया है। रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुत हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदानिया बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद तो हजूर ने अमर दृष्टि कटिया से किया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पुष्ट नाले बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य जो माया भी हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता है पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल रहा मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरवाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज ये भी कोई पूछने वाली गल नहीं चलो हूं तोड़ा सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदानिया अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह हजूर कह लगे मरदानिया अजे नु सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला भी सिखी गल्ला की सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे तक प्रसाद ही छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह करोड़िए चरण से कहते पातशाह मैं गरीब देनी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आता है फिर जिना संभाल लेता है वह पाता अज करोड़िए बख्शिश होगी तोड़े उत्ते भी गुरु की बख्शिश बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो शरीर ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्होंने ताडा विचे बख्शिश दो दिन आके आप कीर्त नहीं दूंगे जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा चौड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पास उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई पाई कीर्तन का अमृत पी तो ये दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगी मरदानिया रवाब चुकी ये शब्द ही अकेली तक पर मरदानिया ने रवाब चुकया तो बाबे ने सोने गले चो ये शब्द का पी किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: जो गुरु का देश सहबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है और लोग सुहेले नानक हर पल आपे मेले और कहरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल जुड़े तो अज गुरु दरोवर साए हुए अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके हो पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उहदे च कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाएंगे उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कर रही है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने सिखा बच्चियों सिखी जीवन सदाचार दिया तला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु Thank you.